आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of copra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है
0: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies underlining vast opportunities available in India across a number of sectors
1: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए हमें हमारे राज्यों छोटे बड़े शहरों विश्वविद्यालयों उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap business event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है मुझे विश्वास है कि आज

0: சும்மா கீழ்
1: கேட் த ரெயின். बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: உங்களுக்காக எம் எஸ் விஸ்வநாதன் இசையில டி எம் சௌந்தரராஜன், பி சுஷீலா இணைந்து பாடிய பாடல் அன்பேவா படத்திலிருந்து வருது, கேட்டுட்டு வாங்க.

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर लेकर हाजिर है शाहिद। और यहां पर संदेश टू सोल्जर में हमेशा हम बात करते हैं अपने वीर साहसी सैनिकों के बारे में और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और हम उनकी जीवनी उनके करियर के बारे में भी जानते हैं और अपने प्रोग्राम में हम उनकी लाइफ में झांक करके उनकी जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रगल को उनके करियर को उनके जोश और जज्बे को भी हम जानने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज संदेश टू सोल्जर्स के खास प्रोग्राम में शाहिद है आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस से भी नवाजे जा चुके हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट SSB। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर होते हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
1: सर धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स, मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो SSB और NIFT तो काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
1: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि अंग्रेजी के एक पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
0: जी।
1: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूंगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
0: जी।
1: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
0: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था।
0: अच्छा।
1: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने क्या क्या त्याग किए देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
0: जी।
1: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
0: जी। तो जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
1: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है उसको उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
0: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे

0: कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त, जो जज्बा आपका रहा होगा वो प्लीज बताइए।
1: उस वक्त जब मैंने ये जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके महज 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए और उन्होंने देश
0: जी
1: के जो के लिए जो किया है, तो ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए। मैंने
0: जी
1: देखा कि आपके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिससे जिससे कि आप अपरिचित होते हैं, लेकिन
0: जी
1: जब आप फौज की नौकरी में आते हैं तो ये विभिन्न आयाम से आप परिचित होते हैं, तो आपको लगता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है।
0: क्या
1: इस
0: बात है,
1: जज्बे को मैंने पहचाना जब मैं फौज की ट्रेनिंग में आया, जब मैं फौज में आया।
0: क्या बात है सर, देशभक्ति से बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल।
0: तो फिर आपका ये सफर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद एक फैशन ग्रेजुएट बनता, फिर सशस्त्र सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
1: जी 2018 यूपीएससी में मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। 2020 के जनवरी माह में सशस्त्र सीमा बल एकेडमी में मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहां पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई।
0: जी
1: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल
0: जी
1: की कठिन ट्रेनिंग के उपरांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं फिजिकली उस टाइम पर बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था, उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जा करके फिर वो तमगा हासिल किया। मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई।
0: जी जी तो वो सफ़र जिस तरीके से रहा, आपको फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए, तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज़ को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो हमें एक चीज़ सिखाई जाती थी,
0: जी
1: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी,
0: जी
1: माता और मदरलैंड इससे ये स्वर्ग से भी ऊपर है, और इस चीज़ को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में
0: जी
1: अंतर्निहित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर,
0: जी
1: और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएँ हैं,
0: जी
1: एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है और एक मेरा
0: मातृभूमि।
1: मातृभूमि,
0: क्या बात है सर। यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
1: जी मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा।
0: जी
1: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में जरूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये सब सर्वोपरि है। आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए, और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो एसएसबी जब ज्वाइन किया तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, लेकिन आपने इसके अलावा ज्वाइन करने के बाद भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज किए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव और सिक्योरिंग, आपने पहली पोजिशन भी हासिल करी थी। उसके अलावा आपने GIS कोर्स किया SSB की अकेडमी भोपाल से, तो वो जो एक कोर्स आपने किया आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वो कितना, मतलब क्या बहुत खतरनाक, बहुत आसान था? क्योंकि देखने में, पढ़ने में नहीं लग रहा कि बहुत आसान रहा होगा।
1: जी बिल्कुल, ये भारत के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में
0: जी
1: एक्सप्लोजिव IED जैसी घटनाएं आमतौर पर कई ज़्यादा देखने को मिलती थी, तो बतौर अ सोल्जर ये एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से एरिया में कहाँ एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, कैसे एक्सप्लोजिव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन चीज़ों के विषय में इस कोर्स में बताया गया, ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है उस क्षेत्र में फोर्स ऑपरेट कर सके और उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कर सके।
0: जी तो शिवम कुमार जी, हमें ये भी बताइए कि आपने GIS कोर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कोर्स आपने किया, उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी और बढ़ा सके आप?
1: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहाँ पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं वो बहुत सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है, तो वहाँ पे हम

0: आपको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहाँ कहाँ हमारी तैनाती हुई है. तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ हमारी तैनाती है इस पर नज़र रख सकते हैं. इसके लिए GIS कोर्स महत्वपूर्ण है.
1: तो आप ऑलरेडी एक सहायक कमांडेंट थे, उसके बाद भी SSB के ही आप जरिए ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहाँ पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें.

0: ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहां पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारे एक जेंटलमैन को वो एक
0: जी
1: फौजी में तब्दील करती है, लेकिन वो दैट
0: एग्जैक्टली
1: इज़ द बेस, वो बेस है, फाउंडेशन है,
0: जी
1: उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और
0: जी
1: एक आप एबल ऑफिसर बन सकें, तो इसके लिए सारे कोर्सेज
0: मतलब
1: कराए
0: आप अपनी
1: जाते हैं।
0: निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसमें एडिशन करते रहें। इसी
1: ये
0: एडिशन में आपकी एक बहुत जबरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की, कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सब के साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
1: जी कमांडो, कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल दोनों
0: जी
1: तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में,
0: जी
1: दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सकें, अपनी ट्रूप्स को, मोराल को हाई रख सकें और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सकें।
0: तो सर ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
1: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो
0: जी
1: समय धीरे धीरे पार हो जाता है और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप तप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहाँ से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं, जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूँ मैं।
0: सर, आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई, और इसके ही एवज में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज़्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस भी मिले, और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी, ऑपरेशनल एक्सेलेंस थे, और ख़ास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया बल्कि उनमें निपुणता हासिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई जिसकी वजह से आपको वो रिकॉग्निशन, वो अवार्ड्स, वो मेडल्स से नवाजा गया।
1: जी बिल्कुल, मेरा ये सौभाग्य था कि एकेडमी से निकलते ही मुझे पहली ही पोस्टिंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस के थिएटर में मिली,
0: जी
1: जो कि बिहार के लखीसराय ज़िले में था, और क्योंकि मैं झारखंड बिहार से मेरा ताल्लुक़ है,
0: जी
1: तो सन ऑफ सॉइल होने का फ़ायदा मुझे मुझे वहाँ पे मिला, मतलब वहाँ पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं,
0: जी
1: नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज़्यादा आसान था क्योंकि लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे, बीइंग अ लोकल मुझे ये फ़ायदा मिला। और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी, जो सीनियर्स का सपोर्ट था, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई।
0: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए, और बिहार का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसके ही बदले में आपको उस सेवा के ही एवज में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया, और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए। आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल।

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिब जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर, आपकी पूरी सर्विस में अभी तक की, आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही SSB एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन SSB बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं CI & JW स्कूल ग्वालदाम। तो सर, ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, CI & JW स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदाम में, उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं, ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CI & JW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है, जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजयी तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: जी, तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि

0: पहले सर्व कर चुके, उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज़्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है।
0: जी
1: जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, वो पता है, वह बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पर टेन्योर रहा है उससे सीखा है, उसको ट्रेनीज को बताने की मेरी चेष्टा होती है, ताकि
0: जी
1: वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
0: जी अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा, और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के, निडर, बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा, भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
1: बिल्कुल शाही जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत
0: जी
1: धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है,
0: जी
1: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
0: क्या बात है
1: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है, ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
0: जी
1: तो फौजी फौजी उसका डट कर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे दिया गया है,
0: जी
1: उसे बखूबी निभाए।
0: क्या बात है, ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
1: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के 3 रास्ते हैं।
0: जी
1: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है,
0: ओके
1: जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है।
0: ठीक है
1: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पे जाना चाहे
0: जी
1: तो SSC द्वारा CPO की परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में। और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
0: जी
1: तो UPSC द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है, जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
0: ओके जैसे कि आपने
1: जी
0: यूपीएससी
1: बिल्कुल,
0: पास करके
1: जी बिल्कुल,
0: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया।
1: जी बिल्कुल।
0: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज़्यादा एक यादगार मैं कहूँ और वो हर तरह से यादगार एंटी माइस्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था वो ऑपरेशन, कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
1: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले 1-2 वर्षों में ही
0: जी
1: ऐसे नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री सोमी जोशी सर, जो इंस्पेक्टर जनरल थे,
0: जी
1: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह,
0: जी
1: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा, और जो मेरे सबॉर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद,
0: जी
1: राणा और प्रदीप का, जिन सब के टीम वर्क ने, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं।
0: जी और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश टू सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे, तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
1: जी, बिल्कुल, वो मेरे मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबॉर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज़ में।
0: जी तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
1: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
0: जी
1: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं। ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से,
0: जी
1: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले, जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है, वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना।
0: जी
1: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में,

0: जिस एरिया में मैं काम करता था
1: जी
0: लखीसराय बिहार में, वहाँ जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे। ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
1: जी
0: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है ये, एक दिन का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
1: ओके, तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको मतलब इनके उन जो काम थे इनके उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी उनको भी आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, उनका उनका जो शैली था उनका, वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे
1: जी,
0: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना, और उनके डर के कारण वहाँ की जो जनता थी कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज़ पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया, इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
1: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
0: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है। असली खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया
1: जी
0: या आतंकवादी को मार दिया, असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकले, जब आपका कॉन्वॉय निकले
1: जी
0: या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
1: क्या बात है,
0: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पे रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी।
1: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
1: जी,
0: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टीजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
0: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था।
1: जी
0: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ का जो नक्सल ग्रुप है उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताए आप
1: जी,
0: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली। फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022 जो मुठभेड़ का दिन था
1: जी,
0: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे, कोई एक खास जगह थी जहाँ पे वो आने वाले थे। तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई, लगभग हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए और हमारे हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के SP थे एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई, जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे। हमने 2 टीमें बनाई और जंगल की अपनी चुनौतियां हैं।
1: बिल्कुल,
0: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी, क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहाँ पे नक्सली आने वाले हैं
1: जी,
0: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये
1: जी,
0: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
1: ओके, तो यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो लोग।
0: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे तो एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई, क्यों, और जंगल में एक सिद्धांत चलता है
1: जी,
0: यू मिस एंड आई हिट, और
1: ओके
0: पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था,
1: ओके
0: हम में से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
1: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
0: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है
1: जी,
0: कि हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पे रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर, क्रॉस फायरिंग।

0: बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो
1: जी
0: नक्सल एनकाउंटर होता है ना,
1: जी
0: ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा
1: जी
0: है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग ख़त्म हुई,
1: जी
0: उसके बाद जाकर के हमने देखा, तो हमने पाया कि दो बॉडीज़ वहाँ पे हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज़ थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
1: मतलब
0: जिस
1: जो उनके लीडर्स थे।
0: जी बिल्कुल जो उनके लीडर्स थे, जिनका आतंक जो है वो पूरे पूरे लखीसराय क्षेत्र में कहें, पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नज़दीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज़ हमें वहाँ मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था, अर्जुन कोड़ा,
1: जी
0: जिसको कि उसके राइट थाई में जा करके हमारी गोली फंस गई थी, और फिर आगे आने वाले 1 महीने बाद
1: जी
0: उसने उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने, और उसने ये बताया
1: जी
0: कि उस दिन SSB के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं मर
1: मर
0: जाऊँ,
1: जाऊंगा।
0: मैं मर
1: जी,
0: जाऊँगा।
1: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
0: जी बिल्कुल। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, मैं इसे अपने जीवन
1: बिल्कुल
0: का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा,
1: बिल्कुल सर,
0: जहाँ पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
1: जी
0: और उसे पराजित किया, और उसका जो फल मिला वो सबसे सुखद फल था, कि जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व,
1: जी
0: हमने सेवाएं दी वहाँ की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ,
1: बिल्कुल
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता था,
1: जी,
0: उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था और
1: क्या
0: उसमें
1: बात
0: बैठ के
1: है,
0: खाना खाता था।
1: क्या बात है
0: तो
1: सर,
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था, उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी, तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहां जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, भाई इमेजिन कर रहा था स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन, वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है, और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूंगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो वो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहां पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है, वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण हैं,
1: जी
0: मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता
1: जी
0: है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं।
1: जी
0: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना,
1: जी
0: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है, जो
1: जी
0: अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
1: जी
0: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं,
1: जी
0: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है, तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं। और एक राक्षस का
1: बिल्कुल
0: वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो
1: बिल्कुल,
0: आनंद आता है, वो
1: उसके
0: उसको
1: कहने क्या है,
0: उसको लफ्जों में बयां नहीं किया जा
1: क्या
0: सकता।
1: बात है। और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहले मैसेज आया है हमारे पास यहां पर, बोथ आरजे एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल AIR न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वनकम नमस्कारम। और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची त्रिचुपल्ली तमिलनाडु से।
0: जी धन्यवाद, और जय हिंद राजेश जी आपको।
1: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर, आपको SSB के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
0: कजरा कजरा लिखा है ये।
1: कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर ये आपके कोई एसोसिएट कोई आपके साथ

0: थी या जूनियर लगते
1: बिल्कुल
0: हैं?
1: बिल्कुल, ये मेरे साथ के हैं, मेरे
0: अच्छा
1: जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है क्योंकि
0: जी बिल्कुल
1: ये मेरे
0: बिल्कुल,
1: टीम के साथी हैं
0: साथी हैं
1: जिन्होंने
0: आपके।
1: कार्य किया है हमारे साथ।
0: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आरजे सर हियर। आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आवर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। इट्स बिकॉज देयर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फेयरलेसली। दे आर रियल हीरोज। I bow my hat to them, so I would say Jai Hind, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. Myself, Shankar Lodh, and my wife, Anjali Lodh, offer obedience to all my, to them. My request to Arjun sir, please forward my message, Shivam sir. Thank you. Sir, आपका मैसेज हमने पहुंचा दिया है, शिवम सर सुन रहे हैं।
1: जी धन्यवाद मिसेज एंड मिस्टर लोध जी। मैं आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद
0: जी। इसके अलावा मैसेज है ये शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट हैं कंकड़खेड़ा मेरठ से।
1: जी बिल्कुल धन्यवाद आपको राजेश जी, मुझे
0: और
1: खुशी है कि
0: जी
1: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी सभी
0: सभी
1: वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सल्यूट है। ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको।
1: जी बिल्कुल, रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि
0: जी
1: रही है, तो यहाँ से मैसेज आया।
0: बिल्कुल, आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं। आप हमारे असली नायक हैं। जय हिंद जय भारत। यह है नेहा मिश्रा सर।
1: मुझे खुशी है कि समाज के सभी लोग फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं।
0: और ये है सर जय हिंद सर, प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए। रोहित मेहर हैं ये विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से।
1: जी रोहित जी धन्यवाद, मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा। शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में। सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है।
1: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के बीच की जो खाई है उसको, उस खाई को पाटना ही
0: पाटना
1: हमारा उद्देश्य था।
0: बिल्कुल करीब लाना है। जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूँ आपकी बातें और आपकी आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, मैं शबनम हूँ बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से। गारंटी अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर आपको।
1: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद।
0: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन। मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन प्राइड ऑफ बिहार शिवम कुमार।
1: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए।
0: जी और ये हैं सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है। ये हैं मृदुल झा।
1: जी धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का
0: जी जी जी
1: उसकी
0: ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेट रही होंगी। मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर। ये एफएम रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार, कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है। हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं, उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद।
1: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं,
0: मैं
1: okay. तो अपना गुरु मानता हूं और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो
0: okay.
1: जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है।
0: क्या तो, बात है सर, तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से, आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह है शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द एक्लेड्स because of his team and their dedicated efforts, a lot of people today live terror free, proud of him. Ayush Dhadich hain ye Nayi Delhi se.
1: Ji bilkul, ye hamare junior hain aur main ummeed karta hu ki jis pehal ki shuruaat hum logon ne ki hai
0: ji,
1: us pehal ko aage aane wale jitne bhi adhikari hain usko maqam tak le jayenge apni team ke sath.
0: Bilkul, aur Ayush bhi uska hissa rahenge.
1: Ji bilkul,
0: aur ye hain naxali operation ko successful banane ke liye bahut bahut badhai Shivam ji, proud of Shalini Pathak likh rahi hain aapke liye.
1: धन्यवाद शालिनी जी आपका।
0: और यह है मैं सोता हूं रातों को चैन से क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए कोई जाग रहा है, शिव है ये मेरठ से।
1: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं यही हमारी कल्पना है।
0: और यह सर शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला, कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो। टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज।

0: की सराय से सर आपके साथ ही हैं भी।
1: जी पंकज हमारे साथ के थे, और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने
0: जी
1: गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया
0: जी
1: है।
0: जी जी और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आप को बिल्कुल कदम से कदम मिला करके।
1: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन ये
0: जी
1: संभव ही नहीं था।
0: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है, और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं ये।
1: ये धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा, मैं एफएम रेडियो को, एफएम रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूँ
0: जी
1: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है, और फौज के
0: बिल्कुल
1: राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
0: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ है श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

0: 102.6 का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स. आप हैं शायद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल. सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है. मैं आपको जैसे अभी बता रहा था तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए, उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में. उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी. आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग और साथ ही एक चीज और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियां हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशंस भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए.
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम यह है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक,
0: जी
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं. जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं. तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे, उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज हो, लगातार उसको केटर करे, उसकी उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में. तभी जाकर के वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है
0: जी,
1: वो आपसे आगे, जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा. जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी वो आपके लिए खड़ा होगा,
0: तभी वो खड़ा होगा क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं. सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं. नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था, वो कौन सा अवार्ड था?
1: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में,
0: जी
1: 2025 के
0: नवंबर, जी
1: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूँ
0: जी,
1: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल CM के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहाँ का वासी हूँ, मेरा स्टेट झारखंड है और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपनी टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था
0: जी,
1: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा
0: जी. और सर, इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी जनवरी 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था. आपकी जो जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था.
1: जी, मैं मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है
0: जी,
1: वो CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में उत्तराखंड में है, जहाँ मैं बतौर ट्रेनर हूँ. तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया. मेरे DIG सर थे, श्री

0: एन बॉम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया।
1: जी, तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
0: सच पूछूं तो जब भी कोई ये कार्य करता है, अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीज़ें की जाती हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: तब सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित का जो जज्बा है वही आपको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि जिंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके
1: जी
0: लिए मैं ये कर रहा था,
1: जी
0: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है।
1: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है, और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर, ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में, और फैशन टेक्नोलॉजी से एसएसबी में आने में, परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए।
0: जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े परिवार से आता हूँ जिसमें कि तीन हम लोग चार भाई बहन हैं और मेरे माता पिता हैं और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्म पत्नी भी हैं।
1: जी
0: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स में
1: जी
0: आना चाहता था, हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से, लेकिन
1: ओके
0: मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
1: अच्छा
0: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है
1: जी
0: मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता था,
1: जी
0: 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे, तो
1: तो
0: वो
1: जाहिर है ये
0: बहुत
1: सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट
0: सबसे
1: सपोर्ट।
0: हाँ ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने। तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
1: सर बिल्कुल, समय हमारे पास खत्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं, और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन मैं बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूंगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी जरूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये है वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड वन से। इसके अलावा ये हैं हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे को हमारे ओर से सल्यूट, और काफी लंबा मैसेज है, ये है पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरवाद से। और आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें और जय हिंद कह रहे हैं, यह हैं सरिता मिश्रा जी। और इसके अलावा प्रसाद दुबासी HC आर्मर सर, योर लीडरशिप इज इंस्पायरिंग एंड यू आर एन एक्सेलेंट ऑफिसर, और योर वी अप्रिशिएट योर डेडिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। शायद ये आपके साथी होंगे
0: बिल्कुल मेरे
1: बाबुल
0: साथी हैं और
1: जी।
0: मुझे इस बात का गर्व है कि इसमें से मोस्टली जितने हैं उन्होंने मेरे साथ कार्य किया है, तो ये एक अच्छी बात है।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे शो में आए और अपना समय निकाला। श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, आज के संदेश सोलर के हमारे खास मेहमान। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लिसनर्स का और हमारे आज के खास मेहमान का।
0: धन्यवाद सर।
1: जय हिंद,
0: जय हिंद, जय भारत।